0: उसको पकड़ मेका ठेका रानाई के हाय हाय वाज द पुयर्स ओरिजिनल नेम ट्रू और फॉल्स के हाय हाय वाज द पुयर्स ओरिजिनल नेम ट्रू और फॉल्स True, she was born to Kitty Hai Hai, Te Puia Herangi.
1: Upoku Pakaru Resources proudly sponsored by Waikato Taimi.